कहो सुन ले लो सब है सारे सुन लो साच कहो सुन ले लो सब है जिन प्रेम की हो सारे जपो न भरी जिन प्रेम की हो तिन ही हम पायो जिन्हों ने उस ईश्वर के चरणा नाल प्रेम कीता प्यार कीता चरणा नाल प्रेम कीता प्यार कीता उन्हों ही उस ईश्वर की प्राप्ति हुई है सत्संग।

अखो सतनाम श्री श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज उन्हां दी रसना चों निकलिया होया महान फैसला साच कहूं सुन लेओ सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सेवा ते सिमरन दो चीजां ने। दास बैठा बैठा कीर्तन करदे ही सोच रहा सी जो सिमरन है उनू गाउना ते उनू सुनना ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਉ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਭਾਉ ਹੋਵੇ जिस सेवा नूं लै लईए ते तां वी महाराज जी दा फुरमान है सतगुरु की सेवा सफल है शर्त जे को करे चित लाए। इहदे च वी चित लगा प्रेम होवे फिर आ कृपा वरसदी है मन चिंदिया फल पावना ते होमे विच्छों जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सेवा बारे भी सिमरन बारे भी सतगुरु जी दे फैसले इहदे विच प्रेम होवे। चार तरह दे जीव धरती दे वसदे ने। वीरवार दे सत्संग विच रूटीन विच आए हो गुरु नानक पातशाह दी दुकान दे उत्तों जिथे जिथे जगह मिले बैठ के सौदा खरीदना जरूर मन दी पत्री फरोलनी के इना चारां विच्चों असी किथे पहुंचे हां। चार तरह दे जीव ने धरती ते एक है मिल क्लास एक थर्ड क्लास एक मध्यम क्लास एक उत्तम क्लास। एक मिल एक थर्ड एक मध्यम एक उत्तम। मिल कौन ने जिन्हां नूं बिल्कुल रब वाले पासे दी ना लगन है ना ज्ञान है बिल्कुल मिल है ही नहीं किसे खाते च। ओ जीव खाली आउंदे ने खाली चले जांदे ने। थोड़ा जा नक्शा वेखना होवे ते मिल क्लास वालियां दा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज मेरे भोरियां च बैठ के बंदगी करन वाले चित आया ते दुनिया नूं तारन लई भी निकले ने। एक पंधेरी नगर है सतगुरु महाराज दे सिखां ने जदों उत्थों दे प्रबंधकां नूं सुनिया दिता वी नौवें पातशाह आए ने गुरु नानक दी जोत उन्हां ने हल्के लफज बोले
ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਓ। ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਵਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦੇਵੇ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ

आ गोचर आ तो वड़ा बड़ा वड़ा है अतुल जिन्हों कोई तोड़ नहीं सकता ओदा कोई अंत नहीं पा सकता उस राम कोई तोड़ नहीं सकता।

कीमत की ने ना पाई है। उस परमेश्वर की कीमत कोई नहीं पा सकता, ते ना ही पैसों दे नाल ओ राम किधरों मिलता। गुरु साहब ने कहा जो कोई इंसान ये कहे कि पैसों दे नाल मैं रब नूं पा लवांगा,

जाना माथे तिलक मथे दे तिलक ला ले हाथ विच माला फड़ ले ते राम राम कह लिया थोड़ी देर सारा दिन झूठ बोलिया ते समझिया कि हुण बस राम खुश हो गए। भगत जी कहंदे ने नहीं।

राम खिलौना जाना लोका ने राम नु खिडौना समझ ले। कोई बच्चा रुस जाए मिठिया मिठिया गल्ला करके बच्चे नु मना लेने। ऐसे तरह लोग रब नु समझदे ने, जो मर्जी करी जाओ जिन्ने मर्जी पाप करो झूठ बोलो, बस थोड़ी देर राम राम कर लांगे वाहिगुरू वाहिगुरू कर लवांगे ते बस साडे पाप खत्म। पर कबीर साहब कहंदे ने नहीं, ओ राम कोई खलौना नहीं बच्चा नहीं, जेड़ियां तुहाडियां गल्लां

जद तक मनो नहीं कहते। एक दुध बेचने वाली गुजरी नदी पार करके एक पिंड दुध बेचन आया करती सी। एक दिन वो दुध बेच के जदों वापस तुरन लगी ता मंदिर दे विच बहुत सारे लोग बैठे सन ते कथा हो रही सी। मंदिर दा पुजारी कथा कर रहे है कि जेड़ा इंसान राम राम कहंदा है ओ संसार सागर तों पार हो जांदा है। उस गुजरी ने कथा सुनी मन विच ये गल वस गई कि जेड़ा राम राम कहंदा है ओ संसार सागर तों पार हो जांदा है। ए गुजरी कथा सुन के अपने घर नूं वापस मुड़ी जदों नदी पार करन लगी

पर जदू ए नाव दे कोल पहुंची बेड़ी दे कोल ता मन विच सोचदी है कि मंदिर दा पुजारी कह रहा सी जेड़ा इंसान राम राम कहंदा है ओ ते संसार सागर तू पार हो जांदा ए ता छोटी जी नदी है जे संसार सागर आदमी राम राम कह के पार हो सकदा है ते मैं राम राम कह के ए नदी क्यों नहीं पार कर सकदा। मन विच भरोसा राम ते बज गया राम राम कर दी ए नदी दे विच वड़ी ते देखदियां देखदियां तुरदी तुरदी नदी दे अध विचकार चली गई। पानी दे उत्ते इस तरह तुरी जांदी है जिवें के लोक धरती ते तुरदे ने और देखदियां देखदियां राम राम कहंदे आ ए नदी पार कर गई। हुण जदों आंदी है तां वी राम राम कह के नदी दे उत्ते तुरदी आंदी है जदों वापस जांदी है उदों वी राम राम कहंदी नदी पार कर लैंदी। एक दिन मन विच ख्याल आया मैं राम राम कह के नदी पार कर लेनी है पानी उत्ते इस तरह तुरनी है इस तरह तुरनी है पानी उत्ते जिवें लोग धरती ते तुरदे ए राह मैनू मंदिर दे पुजारी ने दस्या है ते क्यों ना उस पुजारी नू घर बुला के ओनू रोटी खुआवा प्रशादा छकावा ओदी सेवा करा। गुजरी तैयार होके घरों चल पई उसे तरह राम राम कहंदी नदी पार करके मंदिर जा पहुंची। बड़े प्यार नाल कहा पुजारी नू पंडित जी अज चलो मेरे नाल मेरे घर चल के रोटी खाओ प्रशादा छको। पंडित जी तैयार हो पे अगे अगे गुजरी ते पिछे पिछे ए पंडित जी चल पे। तुरदे तुरदे जद नदी दे कोल आए पंडित जी कहन लगे उस गुजरी नू के बेड़ी नाव ता दूसरे पासे है तू केड़े पासे आ गई है। गुजरी कहन लगी पंडित जी बेड़ी दी नाव दी की लोड़ है जद राम राम कह के इंसान संसार सागर तू पार हो सकदा है ते फिर बेड़ी दी की लोड़ है ए नदी ता छोटी है राम राम कह के इथू भी पार हो जावां। पंडित जी कहन लगे ए थोड़ी हो सकदा के राम राम कही जाइए ते नदी तू पार हो जावां। गुजरी कहन लगी तुसी मेरे पिछे पिछे आओ तुसी ते कदों दे राम राम कहंदे हो मैं ते हुणे कहन लगी हां ते नदी पार कर जानी हां। ए कह के राम राम कर दी ए गुजरी नदी दे उते पानी दे उते तुरन लग पई। ए देख के राम राम कहंदे पिछे पिछे पंडित जी भी तुर पे। जद थोड़ी दूर गए पानी डूंगा सी ते जाके गोते खान लग पे। जद डुबन लगे ते उस गुजरी नू कहन लगे ए आप ते मरेगी नाल मैनू भी मारेगी। ओ गुजरी ते राम राम कहंदी नदी पार हो गई ते पंडित जी डुबदे डुबदे मसां बचे ते बड़ी मुश्किल दे नाल किनारे ते आके लगे। हुण सवाल ए पैदा हुंदा है राम राम ओ गुजरी भी करदी है ओ नदी पार कर गई राम राम ए पंडित भी करदा है पर ए डुबदा डुबदा बचिया
कारण की कारण ही हुई जो गुरु अमरदास पातशाह कहते ने कि राम राम से सारा संसार कहते पर सारे वो मिलता नहीं मिलता किनू जेड़ा पखंड ना करे बल्कि मनो राम राम।

लोग जेड़े ने ओ मैनू कहंदे ने कबीर बौरा है, कबीर बौरा है। क्यों? इस वास्ते कि ना ये पूजा करदा है ते ना ही फुल

लोग कहते ने कबीर बौरा है, ये कबीर बौरा है, ये पागल हो गया। पर कबीर सब कहते मैनू कोई पागल कब, मैनू कोई बौराना कब, मैनू कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे मन का दर्द, मेरा प्यार, मेरा आराम जानता है, मैनू दुनिया की परवाह नहीं।

कसम बेदा रंग कच्चा कपड़े नूं रंग चाड़ो धोवो सारा रंग उतर जांदा इसे तरह जेड़े लोग रब दे नाम ते लड़दे ने रब नूं वखरा वखरा करके समझदे ने समझो कि उन्हां उत्ते राम दा अल्लाह दा वाहिगुरू दा रंग चढ़िया।

एक दूसरे न लड़ते ने जिन्ना ने रब नू भी वंड दिता है। साहब जी कहंदे ने शैतान ने ते दुनिया नू पुठे पासे लैके जा रहे ने, जद कि ना इन्हां दे पल्ले रब है

रहत बिना न सिख कहावे। रहत बिना जड़ा ना बाणी पड़ी ना अमृत धारी ना रहत च पूरा। साहब जी कहते हैं सिख किवें हो सकदा ते रहत तो बिना वो चोटा खावेगा दुखी होवेगा।

तू पाई जिन्ना मर्जी प्यार कर पर पराई औरत नूं अपनी मां समान समझ। जिहड़ा इह गल्लां मन्नेगा साहिब जी कहिंदे ने उह असल विच रहत।

फरमावे मैं चुपे पराया हक खावे पराई निंदिया करे ता गुरु साहब जी कहंदे ने उनू राम उनू वाहिगुरु किस तरह मिले कहन नू ते सारा संसार राम राम कहंदा वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदा पर सारिया नू

0: सतगुरु युग युग अटल चवर तख्त मालक दसम पातशाह हिंदी जग दी जोत शब्द अवतार संसार दे सांझे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र गोद विच दूरों नेड़ों चल के जिन्हें भी माई पाई सतसंगत हरी जस कीर्तन का लाभ उठाने के लिए गुरु दरबार भागे हो आओ अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करो अपनी सुरती अखा बाहर जाने तो रोको इधर उधर वेखन की कोशिश ना करो गुरु स्वरूप का ध्यान करो क्योंकि हरी जस कीर्तन सत्संग का पूरा लाभ ता ही प्राप्त हो सकता है जे साडे तन दे नाल मन भी इत्थे हाजिर होवे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु
0: क्योंकि यह सब सुनाउणा मन नूं है तन नूं नहीं है तन ता एक जरिया है सो गुरु जी कहिंदे ने प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत जदों मन एकाग्र हो जाएगा गुरु शब्द के नाल जुड़ेगा हरी जस कीर्तन से जुड़ेगा भुख दुख गर्मी सर्दी सब लगन तो हट जांदियां हैं क्योंकि सेवक उही हुंदा है सत्संगी उही हुंदा है जिहड़ा भुख प्यास ते कंट्रोल करे गर्मी सर्दी सहार सकदा होवे दुख सुख की परवाह ना करे मान अपमान तो उपर उठे अते अपने मन को अपने काबू विच रखे कंट्रोल करे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो यह साढ़े चंगे भागों की निशानी है कलयुग का बड़ा भयानक समा है ऐसे समय में गुरु की शरण मिल जानी सतसंगत मिल जानी अच्छा करके निश्चय करके ये साढ़े चंगे भागों की निशानी है सो कदम सफल किए ने गुरु वाल चल के नेत्र सफल किए ने दर्शन करके सीस सफल किया नमस्कार करके मत्था टेक के अपनी जबान भी सफल करया करो गज बज के तिना हिस्सों के बोल के

जिज्ञासु कौन है, सत्संगी कौन है, जड़ा सवाल करता है जाके, हे गुरु हे महापुरशो मैनू दसो, मैं चरासी विच फसया होया हाँ, मैं हनेरे विच फसया होया हाँ, मेरी जिंद दुखां विच फसी हुई है, मैनू दसो कोई रास्ता, ये सवाल करता है।

0: बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन
1: धीरे।
0: किस तरीके दे मन धीरज भी चल जाए, किस तरीके दे मन की गति रुक जाए, किस तरीके दे ना ए मन जड़ा दशा दिशा में भजया फिरदा है, सुपने विच भी नहीं टिकदा, सुत्ता प्या भी टिकदा नहीं है, संगत विच भी नहीं टिकदा है, सब कुछ पाके भी टिकदा नहीं है। कबू जिगेड़ा ऊब चढ़ता है, कबू जाए पायाले, लोभी जेरा थर न रहता है, चारे कुंटा
1: पाले,
0: वस्तु नहीं मिलती दुखी हुंदा है, जदों मिल जाती है फिर होर वध दुखी हुंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन धीरे, केड़े तरीके दे नाल मन धीरज विच आ जाए, किस तरीके दे नाल मन की गति धीमी पै जाए, कुछ कंट्रोल विच हो जाए। बिन हर नाम ना शांत होए, गुरु जी कहिंदे हन बाणी दे विच, रब दे प्यारे दसदे हन भाई असीं विछड़े होए हाँ भाई, तू इस करके दुखी है, तू विछड़िया होया है, अपने मालक तो विछड़िया होया है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अपने मालक तो विछड़िया होया है, तू अपने केंद्र तो टुटिया होया है, तू अपने धुरे तो अलग होया होया है, जिन्ना चिर तू नहीं मिलता उन्ना चिर तेनू दुनियावी शांति घड़ी दी घड़ी भावें मिल जाए, परंतु असल शांति नहीं मिलेगी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: क्योंकि शांति भी तीन तरह की होंगी है, एक शरीर तल की शांति, शरीरक तल की शांति, शरीरक भोग पदार्थ खाण पीन दे नाल जवान थोड़ा चिर बस पेट भर जूगा, जवान थोड़ा चिर बस कह देगी, परंतु थोड़े चिर बाद फिर वो ही भुख लग जाएगी। इसे तरह मन, मानस भोग पदार्थ ते फिर कुछ चिर वास्ते मन तृप्त हो जाएगा, सदी भी तृप्ति नहीं है। आत्मक शांति जड़ी है जो परमेश्वर जुड़िया सत्संग सेवा से मन मिलती है, वही सदीवी शांति है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: वही सदीवी शांति है जो आके जाती नहीं है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो उसनु आत्मक शांति कहते हैं। सो नहीं तो गुरबाणी दे विच गुरदेव बहुत प्रमाण दे दे के खोल खोल के समझाते हैं। मैं तू बाकी छोटे मोटे की गल्ला छड़ दे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए
1: सुखिया,
0: सारी सृष्टि का राजा क्यों ना बन जावे हे मनुख, सारी सृष्टि का। बाकी माड़ी मोटी गल छोड़ो, छोटा मोटा कोई अपना बन जाना, कोई अहुदा मिल जाना, कोई इलाके का मालक बन जाना, कोई होर कुछ माड़ा मोटा ज्यादा कुछ बन जाना, सारी सृष्टि का राजा सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करते हैं भाई, जेकर वह रब दे नाल नहीं जुड़िया, जेकर वह परमात्मा का नाम नहीं जपता, जेकर वह उस दाते नूं भुल गया है, फिर उसकी सारी सृष्टि की सृष्टि के मालक की हालत की है,

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन न कर, मुझ में गुण है। और मुझे याद है, एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक राजी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का नाम जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

अत प्रीतम मन मोहना कट सोहना प्राण अधारा राम। ए राग बिहागड़ा दा सतगुरु पातशाह जी दा पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उच्चारण किया है। राग भी बिहागड़ा ही आप जी ने सरवण किया है। एक बंदिश रीत जो है पुरातन मान योग सत्कार योग साडे पिता जी गायन करते ने, तो आओ इस रीत राग बिहागदी है हुणे याद आई है, आओ बड़े प्यार नाल सरवण करो।